आखिर जब वो उससे नाउम्मीद हो गए तो अलग होकर सलाह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया है, और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कसूर कर चुके हो, तो जब तक वालिद साहब मुझे इजाजत न दें मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं। या अल्लाह मेरे लिए कोई फैसला करे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है।

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: छियानवे 851।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: சரியா கார்டர் டியர் எங்கள் சேனல்பட்டி லோஹி தர்வாசா சில்வர்ஜா சோங் சிமெண்ட் ரேத்தி கிரேஷ் ஐ ரங் வகைரா பாஜார் கா பாரிய دستیاب ஐன்
1: ஹானே யச்சு மெஹ்ரான் ஐரன் ஸ்டோர் நஸ்த் பலோச் பெட்ரோல் பம்ப் நேஷனல் ஹைவே ஹாலானி
0: ராப்தே லாய ப்ரோப்ரைட்டர் குலாம் நபி முகல் 03003204372 ஐ 02424601100
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: रोड़ी में सवे साल अकादमी शमवा गुल मातम बाद नवन डालन वाले ताजिए के कुलहरण दौरान चार अजादार शहीद केतरा ही बेहोश शहीद थियल चयन अजादारन मां बिंजड़न जी सुणप कनकोट वासी इमरान शेख ए नवीद शेख तौर कई वही। रोड़ी में रात देर से अकादमी नवन डालन वालो मातमी ताजियो शमवा गुल की रस्म बाद शाह इराक इमाम बारगाह मां बरामद थियो। शमवा गुल की रस्म दौरान सजे शहर जो लाइटू बंद कई व्यू। फिजा या हुसैन के सदाउन से गूंजंदी रही। मुल्क के कुंड कुर्च का लखे आजादार रोहड़ी पहुंची मातमी ताजिए के कुलोरी रहा है। तारीखी मातमी जुलूस करबला मैदान कसरी नासर रोड आए लाला शहजादा चौक का थी मंजिल दा रवानो थो। सिंध समेत हराम जब मातमी जुलूस सज बरामद थींदा सिक्योरिटी सख्त कया व्या। कराचीअ में डाई मोहरमुल हराम जो मर्कजी मातमी जुलूस नशतर पाक का बरामद थी। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया वट नहर थी नक खिताब कंदो वाणी पाक कंदा मर्कजी जुलूस पंज रवाजी रस्म शाह नवाज भुट्टो रोड एम ए जनार रोड ए मर्कजी नुमाइश चौरंगी का थी मंजिल तरफ एम ए जनार रोड से इमाम रजा आलो नमा कई वार में इमाम बारगाह वट नहर थी वो जुलूस की सिक्योरिटी ला रेंजर्स ए पुलिस जब 5000 का वधीक अहलकार मुकरर। विंजुला की राजधानी कराकस में कयामत के वाही मचाए केतन इमारतू किरी पयूं। विंजुला की राजधानी कराकस में आयल 7.2 & 7.5 लोडन वड़ी तबाही मचाए छी। जल्जिले से बचाने लाए खौफ रे घर का बाहर खबर एजेंसी मूजिब जल्जिले घनी हुई लोडा पाड़ेसरी मुल्क कोलंबिया की राजधानी बगोड़ा तई महसूस कया व्या। जल्जिले के हवाई एयरपोर्ट के उड़ामन लाए बंद किया वो रेस्क्यू जरूर चवण है तो जल्जिले सबब जो चालान है मलबे मू इमदादी कार्रवाई जो सिलसिलो जारी। यूरोपी राज जो सातानिया फ्रांस स्पेन इटली हर या ईरान मां टूर टैक्स इंश्योर न कंदो। अमेरिकी सदर ट्रंप जो नेटो चीफ मार्क रूटी से गड मीडिया से गालियों। सदर ट्रंप ईरान के फंड्स जारी करने की तरदीद कंदे ईरान के मंजमंद फंड जारी नाहन कया असा के ईरान के पैसा देने की जरूरत ना है। ईरान के अमरीकी आबादगरन का खुराक खरीद करनी पवी ए पैसा मंजमंद ईरानी फंड्स मां काटिया वेंदा। ईरान अमरीका की रोज टकर छा ईरान अजमान इस्माइल बाघाई चाहिए तो एमओयू बाबत अभी बयान सामू अची रहा अड़ा बयान ईरान इतमाद के घट कर में मददगार साबित न अमरीका के एमओयू के बाकी।

0: हूं पंहिंजो दुकान खोलियो त एफ एम मीरापुर ते पब्लिसिटी कराए अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हा दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे
1: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
0: ऑफिस जी मीरापुर एफ एम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836
0: ऐं मोहम्मद उमेर बी 15 5 8 724
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

वेनेजुएला में ज़लज़ले तबाही मचाए छॾी समय इमारतूं पर 32 ॼणा फौत हज़ार खां वधीक ज़ख़्मी किरियल इमारतनि जे मलबे खे हटाइण वारो ऑपरेशन जारी क्राकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बि बंदि कयो वियो क्राकस में हिक ॿिए पुठियां आयल ज़लज़ले जे ॿिनि झटकनि वॾनि इमारतनि खे मिटी जे ढेर में तब्दील करे छॾियो ज़लज़ले जी शिदत 7.2 ऐं 7.5 जी रिकॉर्ड कई वई परॾेही मीडिया मौजूदु रिपोर्टा ताईं यूरोप ईरान जंग में अमरीका जो साथ न ॾिनो नेटो खां मायूस आहियां बरतानिया जर्मनी फ्रांस स्पेन इटली सहकार न कयो असांखे मदद जी ज़रूरत न हुई पर यूरोपी मुल्कनि सहकार कनि हा त सुठो लॻे हा अमरीका ईरान खां वॾी फ़र्क़ सां जंग खटी ईरान आब न कंदो अमरीकी सदर ट्रंप जो नेटो चीफ मार्क रोटी सां गॾु मीडिया सां ॻाल्हियूं सदर ट्रंप ईरान खे फंड जारी करण जी तरदीद कंदे चयो आहे फंड जारी न पैसा

0: घटि कंदा। अमरीका खे मयूर जी वाज़े मतलियन खां पासो करणु घुर्जे। रोड़ी में तारीखी शमागुल मातम बाद नव डालन वाले ताजिए के कुलो ॾिण दौरान साबु साजण सबब चार अजादार फौत, केतरा ई बेहोश फौत थियल चयन अजादारन मां ॿिन ॼणनि जी सुञाणप कनि कोडवासी इमरान शेख ऐं नवीद शेख तौर कई वई। रोड़ीअ में रात देर डालन वारो शमी सख़्त। राणी टाउन में ज़ाबिते तां चिकटाण जवाबदार पंज ॾहनि वरनि जे मासूम पुट खे तशद्दुद करे मारे छॾियो। पुलिस मूजिब ज़ाल मुड़ुस विच में खुलाबाद चिकटाण हलंदड़ हुई। गुज़िरियल ॾींहुं शाम जो बाड़े हैदर खे संस मामो वालिद अज़र जे घर छॾे वियो हो, जिते जवाबदार अज़र खस भाउ सुल्तान बाड़े हैदर खे तशद्दुद जो निशानो बणाए क़तल कयो। शुरू करे छॾी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराब चमड़ी बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569-0300-3385-69।
3: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, दिलजोपुर ऑटोज ऐं मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल अनेम्ड
5: सरर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजे क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तयाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372-024।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आहीं?
6: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेहरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, अमीर जलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे।
6: अदा जल्दी कर, मूंखे बि मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जीअं मेहरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेहरापुर।
6: राब्ते 9।

Mm-hmm.

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHM

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301 91 896

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

اور دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید.

इतने सितम हुए हैं मोहम्मद की आल पर।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वेनेजुएला में जल्जले तबाही मचाए छी समय इमारतों पर 32 जन की फौज थे की तस्दीक हजारे मलबे हेठा दबियल किरियल इमारतों के मलबे के हटाने वालों ऑपरेशन जारी कराकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद किया वो वेनेजुएला में एक बे पुठियां आयल जल्जले के बिन झटकन वे इमारतों के मिट्टी के ढेर में तब्दील कर छो जल्जले की शिदत 7.2 and 7.5 रिकॉर्ड कई वही वेनेजुएला की वक्ती सदर मुल्क में इमरजेंसी लागू कर छी। पाकिस्तान दुनिया में अमुन डींदड़ मुल्क बणजी वो है। इस्लामाबाद ईरान अमेरिका जंग में ट्राके जो किरदार अदा कर खिते में अमुन के यकीनी बनाया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे नायब वजीर आजम इसहाक डार है तो पाकिस्तान जिम्मेवार एटमी मुल्क है। अमेरिका ईरान जंग में अल्लाह पाकिस्तान का कम वरतो वजीर आजम फील्ड मार्शल जंग के खात्मे लाए दी रात कम हाँ मामला दुरुस्त रुख में वही रहा है। मुल्क में मुआशी इस्तेकाम तरफ वही रहा है। वेचो पर अमुन डां वधी रहो है। ईरान कदें भी एटमी हथियार हासिल न कर सकंदो। अमरीकी सदर ट्रंप चयो तो अमरीकी फौजी ताकत सब बहरी और फिजाई सहूलतन का महरूम थी वो है। तेहरान से गुजरल हफ्ते तारीखी मुआहदो किया है जो कें भी अमरीकी सदर न कयो हो। रोड़ी में तारीखी शमा गुल मातम बाद नव डालन वाले ताजिए के कुलो डण दौरान साहब उसाजन सब चार अजादार फौत केतरा ही बेहोश फौत थे। चयन अजादारन में बिन जन की सुणप कनकोट वासी इमरान शेख और नवीद शेख तौर कई वही। रोड़ी में रात देर से कदीमी नौजवान वो मातमी ताजियो शमा गुल की रस्म बाद शाह इराक इमाम बारगाह में बरामद थो। मंजिल तरफ रवान दवा सिक्योरिटी का इंतजाम इंतई सख्त पुलिस से गड रेंजर्स पर मुकर थियल। सिंध समेत समूरे मुल्क में नव मुहर्रम हराम के मौके से करबला के शहीदन के भेटा पेश करने सिलसिलो जारी। नवाब शाह मीरपुर का सखर लालकाने डिवीजन में अजादारी जारी सबीलू लगाई व्यू सांगड़ उमरकोट थरपाकर नसरफरोज और बेन शहर में या हुसैन जो सदाऊं बुलंद। शिकारपुर जकमबाद कंबर शहदादकोट घोटकी खैरपुर में सिक्योरिटी का इंतजाम सख्त किया व्या। अजादारन पारा नुआखानी और मातम कर शहीदन के भेटा पेश करने सिलसिलो जारी सिक्योरिटी सख्त। ठंड मस्ती वेझो बिन धुरन में मामूली गाल तेड़ो लथियों लगन सब पीरसन कतल शेख तैयब कब्रस्तान अंदर बदलन के कब्रुन दयाल नारे जा बिरादरी के बिन धुरन में झेड़ो थो। झेड़े दौरान लथियों लगन सब 60 साल अलीदाद नारे जो मार थी पो। पुलिस बोर्ड पीर मोहम्मद नारे जो वासी पीरसन जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3855-69।

सबसे अलग अंबिया जितने भी गुजरे

अंबिया जितने भी गुजर

था कोई ऐसा न अब

خوشنما سب سے الگ وصف آقا کے اور ان کی آل کے لکھو ندیم وصف آ

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000
4: خوش خبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

वेनेज़ुएला में ज़लज़ले तबाही मचाए छॾी, सवें इमारतूं पर 32 ॼणनि जे फौत थियण जी तस्दीक, हज़ारे मलबे हेठां दॿियल, किरियल इमारतुनि जे मलबे खे हटाइण वारो ऑपरेशन जारी, कराची जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बि बंदि कयो वियो। वेनेज़ुएला में हिकु ॿिए पुठियां आयल ज़लज़ले जे ॿिनि झटकनि वॾनि इमारतुनि खे मिटी जो ढेर में तब्दील करे छॾियो। ज़लज़ले जी शिदत 7.2 ऐं 7.5 जी रिकॉर्ड कई वई। वेनेज़ुएला जे वक़्ती सदर मुल्क में एमरजेंसी लागू करे छॾी।

विचोवर अमुन ॾांहुं वधी रहियो आहे। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फ़ौजी ताक़त सबबि बहिरी ऐं फिज़ाई सहूलतनि खां महरूम थी वियो आहे। तेहरान तहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआदो कयो आहे जेको कंहिं बि अमरीकी सदर न कयो हो। आबनाहुदमस मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। आबनाहुदमस मां गुज़िरियल ईरानी बहरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जे पासदान इनकलाब चयो आहे त आबनाहुदमस मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कयो वेंदो। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परडे॒ही तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो त अमरीका तय थियल मफ़ाहमत ते अमल करे।

करबला के शहीद के डेटा पेश कर सिंध में अजादारी जारी रोड़ी में बरामद थे नव डर वालों ताजियो शमा गुल मंडी खबर पोतल अजादार कुछ देर आराम बाद आखिरी मंजिल तरफ सफर शुरू कंदा वफाकी कर वजीर मोहसिन नकवी रोड़ी पहुंची जलूस की सिक्योरिटी जायजो वरतो कराची ठठो सजावल बदीन टनो मोहम्मद खान हैदराबाद मटियारी टनो अलैयार मीरपुर खास सिरपारकर उमरकोट सांगड़ नवाबशाह नसरफो जामसरो दादू खैरपुर सखर घोटकी जगमबाद कश्मोर शिकारपुर लाड़काणो कंबर जिले के नंडन वन शहर में अदादारी जारी हर तरफ या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद सिक्योरिटी सख्त पुलिस संगत रेंजर्स भी मुकर थियल।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-35-92-120।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-8569।
3: अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा
5: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हा दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
5: ऑफिस जीअं मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
4: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

बचड़न खे डई लोलियूं माव सुम्हारी असगर जे खाली पी घेरे रोई साइन रुबाब निहारी जै वक्त भी पहें जै बच

రైలు లిమా ఉసుమారీది తడి

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

हर हर जो ओठी तरस तरियाए वगो नी गर जो पांजे नढड़े दे अली असगर जो ओठी तरस तरियाए चयो साइन सुगरा नाम अथम अबो पाक हुसैन इमाम अथम चयो साइन सुगरा नाम अथम अबो

ओठी तरस तड़ियाए वगोनी घर जो ओठी तरस तड़ियाए वगोनी घर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड़ियाए लफ्ज बचड़ी जा जड बुधन लगो ओठी बे अख्तियार थी रोन लगो लफ्ज बचड़ी जा जड बुधन लगो ओठी बे अख्तियार थी रोन लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो मा गुलाम हुसैन जे दर जो ओठी तरस तड़ियाए वगोनी घर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड़ियाए कयों हेडा कशां लाकन जे करे जग खलक्यो खुदावंद जन जे करे कयों हेडा कशां लाकन जे करे जग

वेनेजुएला में ज़लज़ले तबाही मचाए छी सवे इमारतूं पुट ॿटीह ॼणनि जे फौतियुनि जी तस्दीक हज़ारे मलबे हेठां दॿियल फौतियुनि जो अंग 10,000 ताईं पहुचण जो ख़दशो किरियल इमारतनि जे मलबे घटाइण वारो ऑपरेशन जारी क्रॉकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बि बंदि कयो वियो वेनेजुएला में हिक ॿिए पुठियां आयल ज़लज़ले जे ॿिनि झटकनि वारनि इमारतनि खे मिटी जे ढेर में तब्दील करे छॾियो ज़लज़ले जी शिदत 7.2 ऐं 7.5 जी रिकॉर्ड कई वई वेनेजुएला जे वक़्ती सदर मुल्क में एमरजेंसी लागू करे छॾी अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे मूजिबि वेनेजुएला में ज़लज़ले सबबि 10,000 खां 1,00,000 ताईं मौत थी सघनि था सदर आसिफ सरदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पारां वेनेजुएला में ज़लज़ले सबबि जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार कयो सदर आसिफ सरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त पाकिस्तान मुश्किल वक़्त में वेनेजुएला जी आवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे थो मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान मुतासिरनि सां गॾु आहे पाकिस्तान दुनिया में अमुन ॾींदड़ मुल्क बणिजी वियो आहे इस्लामाबाद ईरान अमरीका जंग में टाकरे जो किरदार अदा करे खिते में अमुन खे यकीनी बणायो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे अमरीका ईरान जंग में अला पाकिस्तान खां कम वरितो वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहं राति कम कयो आहे हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि मुल्क में बि मुआशी इस्तक़ाम तरफ़ वधी रहियो आहे वेझो ओभर ॾांहुं अमन ॾांहुं वधी रहियो आहे ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फ़ौज ताक़त सबबि बहिरी ऐं फिज़ाई सहूलतनि खां महरूम थी वियो आहे तेहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआहिदो कयो आहे कंहिं बि अमरीकी सदर न कयो हो आबना हुर्मज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो आबना हुर्मज़ मां गुज़र ईरानी बहरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो ईरान जे पासदान इनकलाब चयो आहे त आबना हुर्मज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कयो वेंदो अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो त अमरीका तय थियल मफ़ामत ते अमल करे कर्बला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ सिंध में अदादारी जारी रोहड़ीअ मां बरामद थियल नौ डोलनि वारो ताज़ियो शमा गुल मंडी ख़बर खां मंज़िल तरफ़ रवाना वफ़ाक़ी गुरु वज़ीर मोहसिन नक़वी रोहड़ी पहुची जलूस जी सिक्योरिटी जो जाइज़ो वरितो कराची ठटो सजावल बदीन टोन मोहम्मद खान हैदराबाद मठियाई टनोलयार मीरपुर ख़ास थरपारकर उमरकोट सांकर नवाबशाह मुसलफोज जामसरो दादू खैरपुर सकर घोटकी जकमबाद कश्मोर शिकारपुर लाड़काणो ऐं कंबर ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में आज़ादारी जारी हर तरफ़ या हुसैन जूं सदाऊं सिक्योरिटी सख़्त पुलिस सां गॾु रेंजर्स बि मुक़रर थियल रोड़ीअ में तारीख़ी शमगुल मातम दौरान साहबु साजन सबबि चार आज़ादार फौत थियल चइनि ॼणनि मां टिनि ॼणनि जी सुञाणप थी वई कनपुर वासी इमरान शेख नवीद शेख ऐं खैरपुर वासी नेमतुल्ला उर्फ़ काली सूमूद नालनि सां कई वई हिकु ॼणे जी सुञाणप न थी इंतिज़ामिया मूजिबि पीउ ऐं गर्मी सबबि आज़ादार फौत थिया आहिनि

निकाहबाद रुख़सती न थियण ते बि औरत हक़मर जी हक़दार आहे। लाहौर हाईकोर्ट हक़मर बाबति दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। अदालत फ़ैसिले में ॼाणायो आहे त निकाह थियण बाद रुख़सती न थियण ते बि औरत हक़मर जी हक़दार आहे। निकाहनामे में हक़मर जा तफ़सील न हूंदो त मुतालबे ते अदा कयो वेंदो। खुला औरत जो मुस्तक़िल शरई ऐं कानूनी हक़ आहे। खुला लाइ मुड़ुस जी रज़ामंदी ज़रूरी आहे। खुला बाद इदत मुकमल थियण ते औरत ॿियो निकाह बि करे सघे थी।

0: मदे जी भरसान तखन थाने के एडिशनल SHO जो तशद थे लाश हथ गोठ तराई वासी उबैदुल्ला मीरानी जो लाश अस्पताल मुंतकल ड्यूटी डॉक्टर चवणा है एहलकार जिसम के तशद का निशान आन जहर सबब संदस मौत थी है तखन पुलिस चवा है तो वाकई जी हर रुख का जांच करूं पाया बस्ती वेझो कब्रिस्तान में वॾनि जे कब्रनि ते दुआ घुरण लाइ आयल नारे जा बरादरी जे बिंदड़नि में झेड़ो लथियूं लॻण सबबि पीरसन अलीदाद नारे जो क़तल इमदाद नारे जो ज़ख़्मी शेख तैयब कब्रिस्तान अंदरि वॾनि जे कब्र ते आयल नारे जा बरादरी बिंदड़नि में झेड़ो थियो घोट पीरमो में नारे जो वासी पीरसन जो लाश अस्पताल मुंतकिल चकवे जो जतोई प्रादेशिक बिंदड़ में पुराने तकरार से झेड़ो एक जणो कतल घोट मजाक कुर्सी में करीमण गुलाम नबी जतोई के बिंदड़ में झेड़ो थो फायरिंग के नतीजे में गोली लगन सबब बशीर जतोई मारदी वे में फायरिंग जो सिलसिलो जारी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान हले ही न तो
2: आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस बुधा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात अइंबा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इनमें मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0303-85-569-0300-33-8556-9।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजे एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अपने खानों में जान।

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 03-00-33-8569।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न थो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-51
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569

इसका हुसैन कहना बता रहा है कि कितना टूटा हुआ होगा ये तेरी दुनिया में ए हुसैन के खुदा।

मेरा कोई नहीं सिवाय हुसैन कहता है।

0: सुनो दोस्तों, एक लम्हे की जिंदगी में मुझको भी तमन्ना है, आप सब भी देखना चाहते होंगे। वो क्या, अब ये हिंदू क्या कहता है
1: कि मैं जो गंगा से पहुंचा कौसर पर, मैं जो गंगा,
0: दूसरा जुमला देखिएगा, खुदा की कसम कितना हसीन जुमला है, इसने क्या तमन्ना की है।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

पिंजला में ज़लज़ले तबाही मचाए छॾी। सवे इमारतूं पर फौतन जो अंग वधीक 167 थी वियो। हज़ारे मलबे हेठां दबियल फौतन जो अंग 10,000 ताईं पहुचण जो ख़दशो। किरियल इमारतनि जे मलबे खे हटाइण वारो ऑपरेशन जारी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंदि कयो वियो। पिंजला में हिकु पुठियां आयल ज़लज़ले जे ॿिनि झटकनि वारनि इमारतुनि खे मिटी जे ढेर में तब्दील करे छॾियो। ज़लज़ले जी शिदत 7.2 ऐं 7.5 रिकॉर्ड कई वई। ज़लज़ले जे वक़्ती सदर मुल्क में एमरजेंसी लागू करे छॾी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे मूजिब पिंजला में ज़लज़ले सबब 10,000 खां 1,00,000 ताईं मौत थी सघनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां पिंजला में ज़लज़ले सबब जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार। सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान मुश्किल वक़्त में पिंजला जी आवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे थो। मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान मुतासिरन सां गॾु आहे। पाकिस्तान खे अकेलो करण जी कोशिश कंदड़ पाण अकेला थी पिया आहिनि। पाकिस्तान दुनिया में अमुन ॾींदड़ मुल्क बणिजी पियो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चयो आहे पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अलाह पाक पाकिस्तान खां कम वरितो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहुं राति कम कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि। मुल्क में मुआशी इस्तेकाम तरफ़ वधी रहियो आहे।

वेचो पर अमुन डां वधी रहियो आहे। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फ़ौजी ताक़त सबब बहरी ऐं फिज़ाई सहूलतनि खां महरूम थी वियो आहे। तेहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआदो कयो आहे जेको कंहिं बि अमरीकी सदर न कयो हो। आपने हुरमज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। आपने हुरमज़ मां गुज़र ईरानी बहरिया जे तय कयल वसनि ताईं थी सघे थो। ईरान जे पासदान इनकलाब चयो आहे त आपने हुरमज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कंदासीं। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त अमरीका तय थियल मफ़ामत ते अमल करे।

करबला के शहीदन के भेटा पेश करण लाय सिंध में आजादारी जारी। रोड़ी में बरामद थियल नव नरंग वो ताजियो शमा गुलमंडी खबर का मंजिल तरफ रवाना। वफाकी गुरु वजीर मोहसिन नकवी रोड़ी पहुंची जलूस की सिक्योरिटी के जायजो वरतो। कराची छठो सिजावल बदीन टुंडो मोहम्मद खान हैदराबाद मठियाई टणवल यार मीरपुर खास सरपाकर उमरकोट सांगर नवाबचा मसरफो जामशरो दादू खैरपुर सक्कर घोटकी जकम्बाद कश्मोर शिकारपुर लाड़कानो अंबर जिले के नंदन शहरों में आजादारी जारी। हर तरफ या हुसैन जो सदाऊं बुलंद सिक्योरिटी सख्त पुलिस संग रेंजर्स भी मुकर थियल।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0383 00 3 8 5 6 9।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
4: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

अलाए छो अबन अलाए छो वेढ़ी चन न पारियो सुख न खे।

के हो बीमारियां में बीमारी वे तरव्या वधाए बीमारियां में बीमारी वे तरव्या वधाए रोए थोरी धलशा रोए थोरी धलशा रोए थोरी धलशा दिसी खाली घरन के।

0: अब आप सुनेंगे जीए
1: तब्दील करे छो जज़रे जी शिदत सत ढाई ब सत ढाई पंज रिकॉर्ड कई वही वंदर जी वक्ती सदर मुल्क में इमरजेंसी लागू कर छी अमरीकी जूलॉजिकल सर्वे मूजिब वेनेजुएला में ज़लज़ले सबब 10,000 का 1,00,000 ताई मौत थी सघे थी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां वेनेजुएला में ज़लज़ले सबब जानी माली नुकसान ते अफसोस जो इज़हार। सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान मुश्किल वक़्त में वेनेजुएला जी अवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे थो। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुतासिरन सां गॾु आहे। पाकिस्तान खे अकेलो करण जी कोशिश कंदड़ पाण अकेला थी पिया आहिनि। पाकिस्तान दुनिया में अमन ॾींदड़ मुल्क बणिजी पियो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चयो आहे पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अलाह पाक पाकिस्तान खां कम वरितो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहं राति कम कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि। मुल्क में मुआशी इस्तेकाम तरफ़ वधी रहियो आहे। वेझो पर अमुन ॾांहुं वधी रहियो आहे। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फ़ौजी ताक़त सबबि बहिरी ऐं फिज़ाई सहूलतनि खां महरूम थी वियो आहे। तेहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआदो कयो आहे जेको कंहिं बि अमरीकी सदर न कयो हो। आपने हुरमत मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। आपने हुरमत मां गुज़र ईरानी बहरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जे पासदान इनकलाब चयो आहे त आपने हुरमत मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कंदासीं। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त अमरीका तय थियल मफ़ामत ते अमल करे।

करबला के शहीदों के भेटा पेश करण लाए सिंध में आजादारी जारी। रोड़ी में बरामद थियल नव डरन वो ताजियो शमा गुलमंडी खबर का मंजिल तरफ रवानदवा। वफाकी गुरु वजीर मोहसिन नकवी रोड़ी पहुंची जलूस की सिक्योरिटी के जायजो वरतो। कराची छठो सचावल बदीन टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद मठियारी टंडो लयाल मीरपुर खास सरपाकर उमरकोट सांगर नवाबचा नसोफो जामशरो दादू खैरपुर सक्कर घोटकी जकमबाग कश्मोर शिकारपुर लाड़कानो कंबर जिले के नंदन शहरों में आजादारी जारी। हर तरफ या हुसैन जो सदाऊं बुलंद सिक्योरिटी सख्त पुलिस संगत रेंजर्स मुकर्र थियल।

0: मते जी बरसान दखन थाना जी एडिशनल SHO जो तश।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301386543।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: थी
1: स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 03-01-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुझे एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03-01-380-8743।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे
1: मिट्टी के ढेर में तब्दील कर छो जलजिले की शिदत 7.5 की रिकॉर्ड कई वही है। वेंजुएला के वक्ती सदर मुल्क में इमरजेंसी लागू कर छी। अमेरिका जो लॉजिकल सर्वे मूजिब वेंजुएला में जलजिले सबब 10,000 का 1,00,000 ताई मौत थी सकन था। अमेरिकी सदर पारा इदारन के वेंजुएला की तकड़ी मदद कर हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारा वेंजुएला में जलजिले सबब जानी ए माली नुकसान से अफसोस जो इज़हार। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चाहिए है पाकिस्तान मुश्किल वक्त में वेंजुएला की अवाम से हमदर्दी जो इज़हार करे तो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुतासिरन से गड है।

सूबाई घर वजीर ज़ियाल सलंजार चयो आहे त प्रिया कुमारी जंहिं धाड़ियल वटि हुजण जो इतलाउ हो उहो मारिजी वियो आहे। कच्छ में ऑपरेशन जारी आहे पर अञा ताईं प्रिया कुमारी जो पतो पइजी न आहे सघियो। कहिड़ी हुकूमत चाहींदी त कंहिंजो ॿार अगवा हुजे ऐं इहो बाज़ियाब न थिए। रोहड़ी में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ज़ियाल सलंजार चयो त हाणे कच्छ में ॾोहारियुनि जी दहशत न पर पुलिस जी दहशत आहे। योम आशूर ते समूरी सिंध में सिक्योरिटी जा फूल प्रूफ इंतज़ाम कया विया आहिनि।

सिंध मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तकरारनि सां भॼणा क़तल एडिशनल एस एच ओ जो तशद थियल लाश हथ टंडो मस्ती वेझो कब्रिस्तान में वॾड़नि जे कब्रनि ते दुआ घुरण लाइ आयल नारी जा तुरियनि में जहिड़ो पीरसान अलीदार नारे जो क़तल इमदाद नारे जो ज़ख़्मी शेख तैयब कब्रिस्तान अंदरि वॾड़नि जी कब्रनि ते आयल नारी जा बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो थियो चक वेझो जतोई बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में पुराणी तकरार तां जहिड़ो हिकु ॼणो क़तल ॻोठ मज़ार कुर्सी में करीमण ऐं ग़ुलाम नबी जतोई जी धुरियुनि में जहिड़ो थियो फायरिंग जी ॾे वठि दौरान गोलियूं लॻण सबब बशीर जतोई मारिजी वियो मदे जी भरिसां ॾखण थाणे जे एडिशनल एस एच ओ अब्दुल्ला मीराणी जो तशदुद थियल लाश हथ ड्यूटी डॉक्टर जो चवण आहे त अहलकार जे जिस्म ते तशदुद जा निशान आहिनि ज़हर सबब संदसि मौत थियो आहे ॾखण पुलिस चयो आहे त वाकिए जी हर रुख खां जांच करे रहिया आहियूं बलोचिस्तान जे डेरा मुराद जमाली में क़तल थियल टिनि ॼणनि जे वारिसनि जो जेकबाद में एहतजाज क़ौमी शाहराह ते लाश रखी धरणो गुज़िरियल ॾींहं जवाबदार इसरार हुजवाणी पंहिंजी ज़ाल कूंज सस मदीहा ऐं सोहरे यासीन वगड़ खे क़तल कयो हो वारिसनि जनाज़े नमाज़ अदा करण बाद टिन्ही मक़तूलनि जा लाश क़ौमी शाहराह ते रखी धरणो हयो मुज़ाहिरनि चयो त जवाबदार पंहिंजे साथियुनि जी मदद सां ज़ाल सस ऐं सोहरे खे बेगुनाह क़तल करे ज़ुल्म कयो आहे जवाबदार ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ ॾियारियो वञे

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म डी कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: तू निहारे थी मौला अली के बादाए थी ते मौला अली जै पिड़ मां मुझे न्याणी वही आए वह असाजी न्याणी इन्हीं पिड़ ताई मिलंदी अज भी उन जो यो ही यकीन आए।
2: संगरार जी मासूम प्रिया कुमारी के जमीन गी वही या आसमान खाई वो पंज साल अग संगरार में योम आशूर ते सपिल विराईंदे गुम थियल मासूम प्रिया कुमारी जी बाजियाबी लाए हुकूमत जो एक भी वायदो वफा न थियो। इन सूबाई हुकूमतन दौरान चार आईजी तब्दील थिया सबई सखड़ियों दवाओं ए टला असरा दींदा रहा अमली तौर कुछ भी न थियो। रोड़ी में मीडिया से गाले सूबाई घरू वजीर ज़ियाल हसन अंजार प्रिया कुमारी जै धाड़ियल वट हुजन जो इतला हो वो मारजी वो है कच्चे में ऑपरेशन जारी आहे पर अया ताई प्रिया कुमारी जो पतो पैजी ना सको जेडी हुकूमत चाहिंदी ता कें जो बार अगवा हुजे आई बाजियाब न थिए। वेंजुएला में जलजले तबाही मचाई छी समय इमारतू पट फोतियन जो अंग 167 थी वो 10,000 का मानू मलबे हेठा दबियल हुण जो खदशो किरियल इमारतन जो मलबो हटाने वारो ऑपरेशन जारी क्रॉकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद कयो वियो। वेंजुएला में एक बे पुठियां आयल जलजले जी बिन झटकन वडियन इमारतन के मिट्टी के ढेर में तब्दील करे छो। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां वेंजुएला में जलजले सबब जानी ए माली नुकसान ते अफसोस जो इज़हार। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान मुश्किल वक्त में वेंजुएला जी अवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे थो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुतासिरन सां गॾु आहे। पाकिस्तान के अकेलो करण की कोशिश कंदड़ पाण अकेला थी विया हैं। पाकिस्तान दुनिया में अमन ढींदड़ मुल्क बणजी वियो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म सागदार चयो आहे त पाकिस्तान जिम्मेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अला पाकिस्तान का कम वरतो वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जंग के खात्मे लाइ नीं रात कम कयो हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि मुल्क भी माशी इस्तेकाम तरफ़ वधी रहियो आहे। अपने अरबुस के कें एक मुल्क की मिल्कियत तौर कबूल न कंदी खिते में जटादार अमन के यकीनी बनाईंदी अमरीकी परडेही वजीर मार्को रूबियो है खिते में इतिहादियन की तरक्की ए खुशहाली चाहूं था। 30 जून ते टेक्निकल टीमों बीहर ईरान से एटमी प्रोग्राम ए पाबंदियों बाबत गाल अपने हुर्मुस मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो अपने हुर्मुस मां गुज़र ईरानी बैरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जी पासदारनि इनकलाब चयो आहे त अपने हुर्मुस मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कयो वेंदो अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परडेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका तय थियल मफ़ाहम ते अमल करे।
3: मेरा आपा

0: करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ सिंध में आज़ादारी जारी। टोड़ी मां बरामद थियल नव डालनि वारो तारीख़ी मातमी जुलूस मुंडो खबड़ जे पिण तां बरामद थियण बाद मंज़िल तरफ़ रवाना हुआ। करूअ जे जलसर जा रोड़ी पहुची जुलूस जी सिक्योरिटी जो जाइज़ो वरितो। कराची में निकतल नाए मुहरम जो मर्कज़ी मातमी जुलूस मंज़िल तरफ़ रवाना हुआ। टटो सजावल बदीन टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद भटियारी टंडो लयाट मीरपुर खास थरपारकर उमरकोट सांगड़ नवाबशाह नौशर अफरोज जामशुरो दादू खैरपुर सक्कर गोटकी जैकबाद कश्मोर शिकारपुर लाड़काणो ऐं कंबर ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में आज़ादारी जारी। हर तरफ़ याफ़सेन जूं सदाऊं सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम।
1: आप सुन रहे थे जीए एफ एम नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

کربلا والا حسین آمد احسان

ਤੇ

मते एहसान तुझ

کربلا وارا حسین آمتے احسان تجھا

دے کربلا والا حسین رحمت اہل

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज़ जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज़ जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: CWDWP जे इजलास में अहम मनसूबा मंजूर। पधराई मौजिब 431 अरब 2 करोड़ 20 लख रुपयन जा नवा मनसूबा मंजूरी लाए एक्निक के मोकलिया वया। थरपारकर में 11 करोड़ 21 लख रुपयन जे खर्च सा इंटेलिजेंस ब्यूरो जे जिले हेडक्वार्टर जी अडावत जी मंजूरी। 278 अरब 61 करोड़ 85 लख रुपयन जे खर्च सा ML3 रेलवे अपग्रेडेशन मनसूबे जी एक्निक के सिफारिश। रोड़ी सिब्बी कोयटा तफ्तान सेक्शन ते 996 किलोमीटर रेलवे पटड़ी की अपग्रेडेशन कई वेंदी। 11 नयू रेलवे स्टेशन भी तामिर थी।

0: तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
5: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ
6: 93 93 85 69।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94।

जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज खा इशा जे निमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खा रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधिक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 583 8569।

0: खूबसूरतीअ जो असल राज़ सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾींहुं कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385569
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर। कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाब शाह। हर अरबा, ख़मीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9896-801।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: चोहट थी वियो 1000 का वधिक जख्मी 10000 का वधिक मानु मलबे हेठा दबियल होण जो खदशो। केरल इमारतन जो मलबो हटाण वारो ऑपरेशन जारी। क्रॉकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद कयो वियो। वेंजुएला में एक झटकन वडियन इमारतन के मिट्टी के ढेर में तब्दील करे छो। जलजले की शिदत 7.5 / 7.5 रिकॉर्ड कई वही। वेंजुएला के वक्ती सदर मुल्क में इमरजेंसी लागू कर छी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे मूजिब वेंजुएला में जलजले सबब पोतियन जो अंग 1 लख तो। अमरीकी सदर पारा इदारन के वेंजुएला की तकड़ी मदद करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां वेंजुएला में जलजले सबब जानी माली नुकसान से अफसोस जो इज़हार। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो है ता पाकिस्तान मुश्किल वक्त में वेंजुएला की अवाम से हमदर्दी जो इज़हार करे तो। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुतासिरन से गड है। पाकिस्तान के अकेलो करण की कोशिश कदड़ पान अकेला थी व्या। पाकिस्तान दुनिया में अमन डींदड़ मुल्क बणजी व्यो है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे नायब वज़ीर आज़म सागदार चयो है तो पाकिस्तान जिम्मेवार एटमी मुल्क है। अमेरिका ईरान जंग में अला पाकिस्तान का कम वरतो। वज़ीर आज़म ए फील्ड मार्शल जंग के खात्मे लाए दी रात कम कयो। हाने मामला दुरुस्त रुख में वही रहा है। मुल्क की मुआशी इस्तकाम तरफ वही रहा है।

0: अबला हरमुस के कें एक मुल्क जी मिल्कियत तौर कबूल न कंदासीं खित्ते में जटादार अमन के यकीनी बणाईंदासीं
1: वर्क टुडे इज ब्रोकन वी ऑल वर्किंग इन टू मेनी डिस्कनेक्टेड एप्स एंड इट्स किलिंग टीम प्रोडक्टिविटी बट फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज अ प्लेटफॉर्म दैट फिक्सेस इट बाय कंबाइनिंग एवरीथिंग यू नीड projects, chat, and knowledge in one place. It's all powered by the world's most complete work AI, so you can find answers from anywhere and get work done faster. Introducing ClickUp, the everything app for work.
0: ਸਨ ਲਾਇ ਨਵ ਰਸਤਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਵਿੰਦੋ ਐੜੋ ਕੋ ਵੀ ਕਦਮ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਥੀ ਸਕੇ ਤੋ ਇਰਾਨੀ ਪੜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਇਸਮਾਇਲ ਬਕਾਈ ਚਾਹੀ ਹੈ ਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਥੈਲ ਮਫਾਮਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ इसराइली फौज जो लबनान में जंगबंदी जो भजकड़ियों जारी दखण लबनान में गाड़ी ते इसराइली फौज जे ड्रोन हमले में बजणा मारजी व्या पढ़ई खबरू इदारे मूजिब गुजल डी भी लबनान में इसराइली ड्रोन हमले में बजणा मारजी व्या हुआ ईरानी पासा इनकलाब कुदस फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी खबरदार करते है त इसराइली फौज के लबनान के समूरन इलाकन में निकरण पवन लबनानी सरजमीन इस्तकामत मजामत जो मैदान है इसराइल पान मुरादो न निकतो तो वह जिल्लत शिकस्त सबब भजी वेंदो

0: वो जो डाकू के लिए था कि वो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GAFM 94।